ये दुनिया एक मेला है जहाँ इंसान मिलते हैं, गरीबों के दुआओं से मगर भगवान मिलते हैं।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति, मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: अपन तो क्यों कर रहा है ये सब, क्यों और मुश्किल कर रहा है मेरे लिए। तू जा बस,
1: ठीक है।

0: जहां पना, आज पहली बार आपकी प्रजा ने आपका प्यार और अपनापन महसूस किया है और इसलिए आज ये आवाम गुस्ताखी की माफी चाहते हुए आपको नवाजना चाहती है अकबर के नाम से, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर।
1: हम इस तोहफे से बेहद खुश हैं, बहुत शुक्रिया, हम इसे कबूल करते हैं।
2: जलालुद्दीन।